0: जलजला टायर चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 10 बजे हो। यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।
1: के तपाईँलाई गर्दन वा कम्बरमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, एलर्जी, छाला रोग का समस्या, पुराना रुगा खोकी, टन्सिलाइटिस, अनिद्रा, माइग्रेन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, हाथ खुट्टा घुड़ा कुहिना पोल्ने वा झमझमाउने, हड्डी खिएर हाट जोड्ने, मांसपेशी वा बाथ को दुखाई, यूरिक एसिड बढ़े, महीनावारी को दुखाई, यौन समस्या, बाँझोपन, मोटोपन, अरुचि, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरू छन् भने आधुनिक मेसिन को साथ में संपूर्ण सेवा को उपचार एक गरिन्छ। प्राकृतिक चिकित्सालय दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही। फोन नंबर 0171-562-459 र 98-645-78-232।

0: वसंत ऋतु को आगमन संगै नव वर्ष को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: राम ओक सब एंड रिकंडीशन हाउस रोल्पा नगर पालिका चार पधिनी खोला रोल्पा।
0: हमारा सेवा हमी कहाँ बाइक मरमत तथा बाइक खरीद बिक्री गरिनु का साथ ही संपूर्ण पार्ट्स होलसेल में पाइन। प्रोप्राइटर राम कुमार केसी संपर्क मोबाइल नंबर 9862468710 र 9802620985। एक पटक है पटक पटक सेवा करने मौका दिनुहोस्। वसंत ऋतु को आगमन संगै नव वर्ष को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ऋतु तंदुरी होटल रोल्पा नगरपालिका चार बीच बजार रोल्पा।
0: हजुर हाम्रा सेवाहरू स्वच्छ खाना बस्नका साथै नास्ता का परिकारहरू मोमो चाउमिन आलू परौठा समोसा छोले तंदुरी रोटी आदि पाइन्छ। प्रोप्राइटर नरबहादुर राणा सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9849503394। वसंत ऋतु को आगमन संगै नव वर्ष को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री लुम्बिनी सुन चाँदी पसल रोल्पा नगरपालिका चार निबाङ रोल्पा।
0: हजुर हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन का गरगहना ग्यारेन्टी का साथ तयार गरिन्छ। आभूषण को विश्वासिलो सुन चाँदी पसल श्री लुम्बिनी सुन चाँदी पसल प्रोप्राइटर राजेश जोली सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844900472 र 9905969998।
2: वसंत ऋतु को हरियाली पहाड़ संगे भित्रिएको नववर्ष 2083 साल को हर्ष उल्लासमय इस पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण ग्राहक वर्ग व्यापारी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नागरिक समाज विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पत्रकार सुरक्षा कर्मी आमा समूह युवा क्लब साहित्यकार शिक्षक विद्यार्थी लगायत देश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण महानुभावहरू सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौ।
3: हरी कैफे कर्मा रोल्पा नगर पालिका चार टूली खेल लिबांग रोल्पा। हमी कहाँ अर्डर अनुसार विभिन्न किसिम का केक लस्सी चिया कफी दही आदि पाउनु का साथ ही होम डिलीवरी को व्यवस्था समेत रहेको छ।
4: प्रोप्राइटर हरी डागी संपर्क मोबाइल नंबर 9864052574।
3: हरी कैफे कर्मा रोल्पा नगर पालिका चार टूली खेल लिबांग रोल्पा।

0: पारी फ्लोगार्ड ब्रांड साथ ही मार्बल का यूपीवीसी प्रोडक्ट लीड फ्री यूवी रेसिस्टेंट हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ भाई को
1: सुरक्षा कर को सात जीवन बचाओ।

0: देश सुनसरी गांव पालिक पांच नारावांग क्षेत्र भीतर रहेगा। पूर्व में मावांग जयमा को सीमा, उत्तर में सुनसरी गांव पालिक सात जेलबांग खिबांग सियारी को सीमा, पश्चिम में सुनसरी गांव पालिक छ ढुंसी को सीमा र दक्षिण में हामजा च्यानधारा क्षेत्र भीतर पर्ने यी चार किला अंतर्गत का सार्वजनिक वन भित्र घास दौरा गर्न जड़ीबुटी संकलन गर्न पात पटिंगर घर घुर्रो लगायत का वन जन्य सामग्री संकलन नगर्न नगराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म वन क्षेत्र भित्र प्रवेश निषेध गरिएको सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराइन्छ। यदि यो सूचनालाई व्यवस्था गरी वन क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको पाइएमा प्रचलित वन ऐन अनुसार कार्यवाही गरिने कुरा सबैमा जानकारी गराउँछौ।
1: अध्यक्ष पूर्ण घरती मगर अर्जुन, उपाध्यक्ष स्मृति थापा, सचिव नरू पुन मगर, कोषाध्यक्ष देविका बुढा मगर एवं सम्पूर्ण टोल विकास समिति सुनसहरी गाउँपालिका पाँच नारबाङ।